ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बांधवाय नमः।

ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय नमः।

0: रामचंद्र की जय, अयोध्यापति रामचंद्र की जय।
1: जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ग्लोरी टू द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स। मे द रेन ऑफ राम राज्या लिव फॉर एवर। लॉर्ड रामा की जय, लॉर्ड रामचंद्रा की जय।
2: माई बिलवड पीपल ऑफ अयोध्या एंड माई डियर ब्रदर्स फ्रॉम किष्किंधा एंड लंका, दिस क्राउन ऑन माई हेड डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। विदाउट योर सैक्रिफाइस, योर करेज एंड योर अनवेवरिंग डिवोशन, righteousness could not have triumphed. Today, I wish to honor the bonds that saved us all.